एक्स का एफ एम का वो कुछ आऊँगा प्रोग्राम को सब जैसे का के रादो के कब तू का खाई से पंग कोई खाई को रादो के नुमरू या वो ने तन सेवा पेन नेहा एफ एम अन तो कोई आऊँगा वो लंग जैसे अंगो सब जैसे का के आ वो लंग कौन गया कोई अरे को प्रोग्राम को तो कोई मुझे का वो लंग कोई सब जैसे का के रादो कि कब तू आ कैसे पंगो उसे दे मने ते मने कहीं को सुपा आ मुंह का अंगो वाले मुझे ते मुझे तब आ कौन आ ते का वो दंग कि किन्हीं जो आए के कोला पंगो उसे ते कब चिंगो तू लगे कन कब जो अंगा उसे ते कब को उसे लाम कर चले कब को आ ना थम को प्रॉब्लम अंगो पंगो मने खासे कब को उसे लगे कन चुंग हले कि मांगो मसो डॉक्टर अंगो वाले मुझे तब आ